0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे. यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें. ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबोर्न.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी. कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग. साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें म्यूजियम्स विक्टोरिया .com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं. यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है. अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है. आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं. मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय.
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं. आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं. अपने करियर को संवारें. अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं. विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत.
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM.
4: अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद है तो इसे ऑन एयर बनाए रखने में हमारी मदद करें. यह कार्यक्रम स्वयं सेवकों के द्वारा आपके लिए बनाया गया है. आपकी भाषा यहाँ जीवित है, आपका समुदाय यहाँ बसता है. सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसका हिस्सा भी बनिए. आज ही अपनी सदस्यता लें या उसका नवीनीकरण करें. $11 कंसेशन या $16 फुल. www.3zzz.com.au पर जाएं या हमें कॉल करें 9415-1928. मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा. क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है. मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है. यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है. सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है. अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए.
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं. आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं. अपने करियर को संवारें. अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं. विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत.
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM.
6: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें बहुत ही खामोशी से शुरू होती हैं। एक छोटा सा बीज मिट्टी में कहीं दबा हुआ, ना कोई शोर ना कोई घोषणा, बस किसी का विश्वास, किसी का सपना और किसी की लगातार मेहनत। फिर समय गुजरता है, उस बीज को धूप मिलती है, बारिश मिलती है, संघर्ष मिलते हैं और धीरे धीरे वो बीज एक पेड़ बन जाता है। एक पेड़ जो सिर्फ खुद नहीं बढ़ता बल्कि अपनी छाया देता है, लोगों को जोड़ता है और फिर उससे नए बीज गिरते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं, नए सपने जन्म लेते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, हर कलाकार की एक कहानी होती है जो शायद किसी छोटी सी बात से ही शुरू होती हो, और कला की खूबसूरती भी शायद यही है। एक नज़र, एक आवाज़, एक एहसास, एक छोटी सी कहानी किसी की पूरी ज़िंदगी को छू जाती है। और ऐसी ही कई अनगिनत एहसासों को अपनी आवाज़ के जादू से जिंदा कर देने वाली लार्जर दैन लाइफ आशा ताई ने दुनिया को अलविदा कह दिया हाल ही में। आइए उन्हें एक श्रद्धांजलि देते हैं उनके इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं मेलबर्न का आपका अपना 92.3 एफएम गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम विपिन और राशि के साथ। तो ये खूबसूरत सा गीत, रुकती है, थमती है, कभी बरसती है, बादल के पांव रखे बारिश मचलती है। तो ज़िंदगी की इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही तो सबसे गहरी कहानियाँ छुपी होती हैं। तो आइए कुछ इसी तरह की कहानियाँ सुनते हैं आज के हमारे स्टूडियो गेस्ट के साथ।
1: दोस्तों, कला और रंगमंच की दुनिया में कुछ यात्राएं ऐसी ही होती हैं। आज की शाम हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही बीज की जो 10 साल पहले मेलबर्न की धरती पर बोया गया था और आज भारतीय रंगमंच प्रेमियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक वृक्ष बन चुका है। और दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं?
0: तो हम बात कर रहे हैं नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर अकेडमी की, जो अपने 10 साल पूरे कर रहा है।
1: और इस खूबसूरत सफर के पीछे जिस शख्स की सोच, समर्पण और रंगमंच के लिए बहुत ज्यादा प्रेम रहा है, वो आज के हमारे खास मेहमान हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा कला और कम्युनिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। मंदार वैद्य जी, मेलबर्न 92.3 एफएम गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: विपिन जी और राजेश्वरी जी, मुझे ये मौका देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं करेक्शन कहना चाहूँगा, ये सिर्फ मेरी मतलब मेरा एफर्ट नहीं है, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनकी कठोर परिश्रम, लगन का नाट्य दर्पण एक प्रोडक्ट है। तो उन सभी का भी आज के इस रेडियो प्रोग्राम में वो भी यहाँ पे मेरे साथ हैं आज, ऐसा आप समझ लीजिए।
0: आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसी तरीके से इस कहानी को, तभी मैंने कहा कि कई सारी कहानियाँ हम सुनेंगे तो आपके द्वारा हम उन सभी की कहानियाँ सुनेंगे।
2: जी।
1: वैसे मंदार जी, इस कहानी में हम भी साथ रहे हैं इस सफ़र में, बड़ा अच्छा सफ़र अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा उम्मीद है। और इस 10 साल के सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। और थिएटर जो है ना, सिर्फ मनोरंजन नहीं, मुझे लगता है कि एक समाज का आईना भी होता है। जब आपने इस सफ़र की शुरुआत 10 साल पहले करी थी तो क्या ये सिर्फ एक संस्था थी या कोई आपका कोई बहुत बड़ा कोई सपना था कुछ?
2: देखिए, मैं मुंबई में जब था तो मैं हिंदी थिएटर के साथ जुड़ा था और मराठी थिएटर के साथ भी जुड़ा था। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने काफ़ी मराठी प्रोडक्शंस करे पहले 10 साल जी। और उसके बाद एक ऐसा बहुत सुनहरा मौका आया कि पु ल देशपांडे, जो एक बहुत प्रसिद्ध मराठी लेखक है, उनका रूपांतरित एक नाटक जो जिसका नाम था मायाजाल, और जो रूपांतरण किया था स्वर्गीय श्री सत्येंद्र मिश्रा जी ने, तो उनको मैं मेरी मेलबर्न की हिंदी नाटक की जो जर्नी है उसका जनक मानता हूँ उनको। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहूँगा कि वो मेरी शुरुआत थी 2013 से, जब हमने हिंदी नाटक करना शुरू किया। और तभी जो कम्युनिटी के, तभी के जो एल्डर्स थे मेलबर्न के, जैसे कि सत्येंद्र मिश्रा जी तो थे ही, मगर रतन अंकल, नलिन जी, सुभाष जी, सारे मतलब जो लोग यहाँ पे कार्यरत थे, उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया मुझे और उन्होंने बढ़ावा दिया कि नहीं, तुम ये करो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी रंगमंच की एक कमी है और कला जो है वो हमेशा एक उसका एक त्रयी मानी जाती है, मतलब संगीत, नाटक और नृत्य, ऐसे ट्रिलॉजी कहा जाता है। तो उसमें नाटक हिंदी यहाँ पर नहीं है, तो तुम ज़रूर इसको शुरू करो, हम सारे साथ देंगे। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और पहले से मेरा विचार ये था कि नाटक करते करते अगर हम समाज को कुछ वापस दे सकें, और ख़ास करके चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स और बच्चों से जुड़ी हुई सामाजिक संस्थाओं को, जैसे कि स्मिथ्स फैमिली हुई, और पिछले कई सालों से हम फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रंस फाउंडेशन, जिससे आप सभी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम हमारा योगदान ऐसी संस्थाओं को करें कि जो समाज को कुछ हम वापस दे सके। तो ये दो विचार रखकर हमने नाट्य दर्पण, और और आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट फ्रेंड्स सच एज योर सेल्फ एंड लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स स्पेशली नम्रता जी मुकुंद जी एंड मेनी मेनी मोर हु आर देयर स्टैंडिंग यू नो एंड दे हैव माई बैक.
1: बिल्कुल मुझे याद है मायाजाल मेरा पहला नाटक था जो मैंने आपको देखा और आपसे परिचय मेरे को मेरा सौभाग्य था कि मिलने का मौका मिला.
0: तो ये तो आपने एक थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताई जो आपके यहाँ पे इंडिया से यहाँ आने के बाद में आपने जो थिएटर में अपना पैर रखा और जिस तरीके से किया. तो मैं ना आपसे बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगी जो आपको पर्सनल लेवल पे आप मुझे आंसर कर सकते हैं लेकिन शायद सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जहाँ एवरीथिंग सब कुछ प्रोडक्टिविटी टारगेट्स और सर्वाइवल है बिल्कुल फास्ट बेस्ड, तो इसमें आपके लिए क्रिएटिव आर्ट्स का कितना एक्चुअल वैल्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में?
2: मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूँ इसका कि योगा क्लास में हम बैठते हैं और हम डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, हम कहते हैं कि अब हम हमारी दृष्टि दो आईब्रोज के बीच में रखेंगे और बाकी सब भूल जाएंगे, कुछ भी भूल नहीं सकते हम. सारे बाकी के एहसास ज़्यादा उभर कर आते हैं. तो मैं समझता हूँ कि कला और ख़ास तौर पर नाटक या ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे उस उन 3-4-6 घंटे जब आप तालीम कर रहे होते हैं या आप शो कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं, तो आप वाकई में सब कुछ भूल जाते हैं. और वो वाकई में एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है. इट्स अ एक्टिंग इज अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा मैं सोचता हूँ हमेशा. तो मुझे अगर किसी ने पूछा कि अरे अच्छा आप लोग ये करते हैं, आप लोग ये कैसा, इतना किसके लिए, कोई किसके लिए कुछ नहीं कर रहा, सब लोग अपने लिए कर रहे हैं जी. अपने दुख दर्द भुलाने के लिए कर रहे हैं और उसमें से एक अलग ही जो संतोष मिलता है उसकी रुचि को चखने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है.
1: और मुझे एक बात और भी लगती है कि जो आपने बताया कि जैसे मेडिटेशन को कहते हैं, एक बड़े एक साधारण सी एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन है मेडिटेशन की, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन.
2: जी जी जी.
1: तो नाटक शायद जो आपने बात कही कि वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, तो वो भी मेडिटेशन ही हो गया ना.
2: जी. और ऐसी बात है ना, एक जॉब तो सबको करनी पड़ती है, एक जॉब में एक बॉस होता है, एक घर होता है, वो घर में भी कोई एक बॉस होता है ना. और यू नो लाइफ गोज ऑन, बहुत बहुत सारी सरपिचियाँ होती हैं जीवन में. और जब ये करते हैं, नाटक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक अपने रूह के लिए काम है और हम खुद को इसमें सच्ची मुच्ची भुला दे सकते हैं खुद को, और कैन इमर्स योर सेल्फ.
0: जी बिल्कुल. मैं आई थिंक मैं भी पर्सनली यही मानती हूँ कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया या थिएटर हो गया, जो भी, ये सारी सिर्फ हॉबीज़ नहीं होती हैं, ये तो एक्चुअली एक इमोशनल नरिशमेंट है जो कि हमें सेन एक इंसान बनाए रखता है, है ना?
2: जी बिल्कुल. जी बिल्कुल,
1: अच्छी बात कही. वैसे जैसे विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक और भी चैलेंज हो जाता है कि नॉस्टैल्जिया भी होता है. और आपने जो बीड़ा उठाया जो स्टार्ट करने का, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जितना इतने सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ जो लोग जुड़े इस सफ़र में, इस क्रिएटिव जर्नी में, सभी ने उसमें सहायता करी. तो बाहर जो है एक अलग तरह का चैलेंज है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल था अगर आपको हिंदुस्तान में ऐसा कुछ संस्था बनानी होती है कुछ उसके कंपैरिजन में यहाँ पर करने में?
2: देखिए, एक क्षणिक एक उदासीनता सी छा गई मेरे दिल के ऊपर जब आपने सवाल उठाया, मैं इमोशनल हो गया. क्योंकि आपने जो रेडियो प्रोग्राम में बुलाया और ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं, सो इट इज़ अ टाइम टू स्टॉप, लुक बैक, थिंक, डीप ब्रीद एंड काउंट द ब्लेसिंग्स, है ना. मैं आपको कह सकता हूँ और ये मैं आपको दिलासा दिला सकता हूँ कि शायद ही हम जो 100 लोग मैं बोल रहा हूँ जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, इस नाटक के क्षेत्र में, यहाँ पर मेलबर्न में, शायद ही हम इतना काम भारत में रहकर कर सकते हैं. मतलब जो चीज़ मैं मेरे वहाँ के दोस्तों से सुन रहा हूँ और वहाँ का जीवन जितना व्यस्त है, ये जो मुझे अभी पता चल रहा है जैसे उनसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जिसको बोलते हैं ना, वो हम यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं सब. कि हम यहाँ एक थोड़ा सा 9 to 5 का हमें एक प्रिविलेज आता है कि हम 5 या 6 या 7 चलो समझ लीजिए चलो 2 घंटे एकदम मेहरबानी कर दी दफ्तर पर मगर फिर भी आप 9 घंटे के बाद तो छूट ही जाएंगे ना तो उसके बाद आपको वक्त तो मिल ही जाएगा तो कम्यूट में वक्त बच जाता है काफ़ी चीज़ें यहाँ प्लस पॉइंट्स हैं तो हम डेफिनेटली वी आर डूइंग रियली वेल और दूसरी बात है कि कॉम्पिटिशन कि जहाँ पे हम अगर एक प्रोडक्शन करें और उसके लिए हमारे पास अगर 55 लोग 60 लोग हों तो आप समझ लीजिए कि अगर हम वहाँ होते तो उस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 1000 लोग होते हैं तो ये एक सोचने वाली बात है कि कितने लोगों को मौका मिलता होगा वहाँ रहकर और कितने लोगों को रुचि होगी और वो ये खुद को उनके माँ बाप बोलते होंगे कि नहीं ये मत करो ये क्षेत्र अच्छा नहीं है इसमें पैसा नहीं है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है मगर यहाँ लोग अपना नौकरी धंधा भी संभाल सकते हैं अपनी शिक्षा भी ले

0: हुआ, इंडिया में भी किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया हुआ है. तो आपको लगता है कि इंडिया में ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, ज़्यादा स्केल पे काम होता है, ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, या आप अपने इस मेलबर्न वाले स्पेस में यू आर सेटिस्फाइड? मतलब एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए कितना, जो कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, तो कहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है?
1: देखिए, मेरी शुरुआत ही भारत में हुई और मेरी शुरुआत मराठी और हिंदी नाटक हम करते थे मुंबई में, पृथ्वी थिएटर और NCPA में. और मेरे जो गुरु हैं श्री विक्रम वाटवे, जो अब US में बसे हुए हैं, तो उनका वरद हस्त मेरे ऊपर था. तो वहाँ पर भी मुझे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिली. लगभग लगभग 250 के ऊपर शोज़ मैं कर पाया भारत में. और वहाँ जो टैलेंट है तो उसका स्रोत तो वही है ना सारा. हम तो वहीं से लेकर आए हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं से सारा आया हुआ है. तो नो डाउट टैलेंट और विविधता बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. तो और इसीलिए शायद लोग वहाँ ये प्रोफेशनल अपना चॉइस बनाने से थोड़ा कतरते होंगे शायद, जैसा मैं कतरा था आखिर आखिर में मैं भारत में जब था. और मगर यहाँ पे आके फिर जॉब के साथ साथ भी ये कर सकते हैं. तो क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से दोनों जगह सिमिलर हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल यू मिक्स इन. और दैट्स इट बेसिकली. आई थिंक इट्स सेम है बोथ प्लेसेस.
0: तो ये सवाल तो मैं आप दोनों से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि विपिन भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में बिल्कुल आपके साथ इतना काम करते हैं. तो एक आर्टिस्ट के लिए ना एक ऑडियंस ही सब कुछ होती है, क्योंकि आई थिंक वहाँ से ही आपको फ्यूल मिलता है. जब आप स्टेज पे एक्ट करते होंगे और जब देखते हैं कि ऑडियंस से आपको वो रिस्पांस मिल रहा है, कि कोई देख रहा है आपको एंड तालियां बजती है, तो आई थिंक इट आपको, इट जस्ट गिव्स यू द फ्यूल कि आप अच्छा. तो आप मुझे बताइए कि इंडिया में ऑडियंस ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, यहाँ पे लाइक क्या आपका व्यू क्या है उसके बारे में?
1: एक तो पहला फ़र्क यह है कि यहाँ पर ऑडियंस सैकड़ों में होती है और इंडिया में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं देखने. जैसे हमने बम्बई के कौवे शो किया जो शफात खान जी ने लिखा था और हमारा पहला नाटक, पहली प्रोडक्शन था वो, तो उसके हमने लगभग 150 के आसपास शोज करे. तो वहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा पैमाने पे आती है और एंजॉय भी करते हैं काफ़ी. और एक कल्चर है एक घर से बाहर निकलने का. और हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं ना, जैसे अभी प्रशांत दामले जी शायद 13,000 शोज के ऊपर शोज कर चुके हैं. तो उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था तो बोल रहे थे कि बहुत जिम्मेदारी है एक आर्टिस्ट की. वो बोल रहे थे उनके इंटरव्यू में कि याद रखना हमेशा कि जो ऑडियंस आई है उसने वो टिकट निकाल के आई है, वो टैक्सी रिक्शा बस पकड़ के आई है, धूप में आई है, बारिश में आई है, ठंडी में आई है,
2: समय दिया है,
1: अपना समय देकर उन्होंने ये चॉइस बनाई है कि हम आपका नाटक देखेंगे आज. तो आपका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप मतलब यू डोंट लेट देम डाउन. तो उस हिसाब से इंडिया में क्योंकि प्रोफेशनल काम ज़्यादा होता है तो आई थिंक वहाँ पर मतलब आप सच पूछिए तो मेरे हिसाब से प्रायोगिक में जो प्रायोगिक नाटक या एक्सपेरिमेंटल, हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें ज़्यादा स्कोप है क्रिएटिविटी के लिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए. और इंडिया में कमर्शियल भी बहुत ज़्यादा चलता है तो और एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी थोड़े पैमाने पे चलता है उधर. हालांकि आजकल एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी बहुत बढ़ रहा है मतलब क्रिएटिविटी के हिसाब से भी. तो ऑडियंस दोनों जगह ही मेरे को लगता है कि उतनी ही पावरफुल और अप्रिशिएटिव ऑडियंस है. मेलबर्न में क्या होता है कि मेलबर्न में थोड़ा एक घर की बात हो जाती है. वो जो अब घर की जो पीठ थपथपाते हैं ना बड़े आकर, अपनी माँ और अपने पिताजी और अपने दोस्त और अपने यार, वो फीलिंग आती है क्योंकि लोग जानते हैं एक दूसरे को. तो वो प्यार कुछ एक अनोखा प्यार है. तो वो मैं उसको हमेशा मतलब थोड़ा बायस लगेगा मगर यहाँ की ऑडियंस ज़्यादा प्यारी है.
2: मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर शो कम होते हैं. यहाँ पर हम एक या दो या तीन शो कर सकते हैं क्योंकि ऑडियंस कंपैरेटिवली कम है. हिंदुस्तान में कोई अच्छा प्ले होता है तो उसके 50-100 शो हो रहे हैं कुछ है।

0: तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है. यहाँ उसमें थोड़ा सा वो भी रहता है कि कम है तो शायद हमें लगता है कि और भी जस्टिस तो देना ही पड़ता है, टाइम तो देना ही पड़ता है अगर लोग जो आ रहे हैं तो.
1: आपने ये नोटिस किया है वैसे कि इंडिया में अगर आपको तारीफ मिलती है तो तालियां भी मिलती है, गालियां भी मिलती हैं.
2: जी जी.
1: आपने यहाँ पे भी फील किया है इस बात को कि आपको कभी क्रिटिसिज्म मिला है कि इसमें आपने ये ड्रामा में ये था वो था, आपको ऑनेस्ट रिव्यूज?
2: मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ और मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी.
1: वेरी ट्रू.
2: मतलब क्रिटिक इज द बेस्ट नेबर.
1: यस.
2: तो वी हैव मेड श्योर दैट we have good friends who are very good critics from time to time. And that itself gives us a very good stream of excellent constructive feedback which only helps you to grow.
1: Bilkul.
2: So however, coming to your question, audience se थोड़ा मतलब उतना क्रिटिक यहाँ पे उतना नहीं मिलता. देर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर सम पीपल हैव अपफ्रंटली गिवन मी सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बट दे वर वेरी रेयर.
1: इस बात पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि और ये बात ना मैंने अक्सर महसूस की है कि जो यहाँ पे कई बार स्टेज प्लेस होते हैं जो कि पुराने किस्से पुराने नाटक है उस पर बेस्ड होते हैं, क्लासिक कहानियों पर जो उनसे प्रेरित होते हैं, तो उनमें ना एक टाइमलेस क्वालिटी तो होती है, लेकिन कभी कभी एक दर्शक के तौर पे लगता है कि कुछ बातें ना आज के समाज और आज की रियलिटीज से थोड़ा दूर महसूस होती हैं. तो एक कलाकार और निर्देशक के रूप में आप किसी अगर नाटक को चुनते हैं कि हमने यह करना है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्या आपको लगता है कि थिएटर का काम सिर्फ क्लासिक्स को जीवित रखना है या फिर उसे समाज का आईना बनाकर उसको साथ में अपने साथ इवॉल्व करना है, स्टोरीज को इवॉल्व
2: होना? वाह राजेश्वरी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है. तो इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि इन दोनों में एक सुनहरा संगम होना चाहिए कि दोनों का महत्व अपनी अपनी जगहों में उतना ही है. अब हमारे केस में ऐसा है कि जैसे कहा कि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए 100 से अधिक लोग हैं और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव इजीली मोर देन 50 आर्टिस्ट्स हु परफॉर्म ऑन स्टेज एंड मोर देन 30 और 40 पीपल हु सपोर्ट अस आर्डेंटली इन द बैक स्टेज. तो इसके लिए हमारे यहाँ वो संगम अपने आप ही हो जाता है कि जैसे हम हमारे इतनी बड़ी तादाद में जो आर्टिस्ट होते हैं और हम आर्टिस्ट चुनते नहीं हैं और सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और यही हमारा उद्देश्य है कि ये ऑडिशन ना हो कि आपको लिया आपको नहीं लिया, आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको लिया, ऐसे ना करते हुए हम सभी को उसमें शामिल करते हैं. तो ऑटोमेटिकली हमने पिछले ख़ास तौर से पिछले 6 सालों में हमने लगभग यहाँ 20 से ज़्यादा नाटक अंदरूनी समूह में हमने लिखे हैं और वो सारे हम करंट टॉपिक्स पे हमने चुने हैं और एक लेखक निर्देशक आपके सामने ही बैठे हैं यहाँ पे श्री विपिन.
0: वैसे बात से मुझे याद आया कि जो अभी इसके बारे में भी आपसे थोड़ा जिक्र करेंगे उसका कि
1: जी हाँ जैसे
0: प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है.
1: जी हाँ, तो वैसे बातें जब इमोशंस और रिलेशनशिप और ह्यूमन कनेक्शन की जो आप कह रहे हैं, तो कुछ एहसास ना ऐसे भी होते हैं जो कभी एक साथ नहीं मिलते, वो ना धीरे धीरे समझ आते हैं, लिटिल बाय लिटिल, कतरा कतरा. और आर्ट भी शायद ऐसे ही होता है, एकदम से नहीं बनता. एन आर्टिस्ट स्लोली इवॉल्व्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, अप्लॉज, हार्ट ब्रेक्स एंड मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. तो सारे परफॉर्मेंस एक एक लेयर ऐड करता है एक आर्टिस्ट में, है ना, वहाँ से आर्टिस्ट ग्रो होता है. तो कुछ ऐसा ही खूबसूरत एहसास सुनिए आशा ताई की आवाज़ में, कतरा कतरा मिलती है.

0: वेलकम बैक दोस्तों. तो आप सुन रहे हैं राश्री विपिन और हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो गेस्ट मंदार और जिनके साथ बड़ी ही मज़ेदार बातें चल रही हैं. अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 03-9415-1923. तो चलिए आगे बढ़ते हुए विपिन.
1: हाँ, मैं सोच रहा था कि अब एक जिस खास वजह से हमने प्रोग्राम में आज मौका मिला है हमें आपसे बात करने का, आज मंदार जी हमारे साथ समय निकाल कर आए हैं
0: जी.
1: तो ये मेलबर्न में जो नाट्य दर्पण के 10 वर्ष हो रहे हैं इसके उपलक्ष्य में जिसको दशकोत्सव नाम से एक जो महोत्सव हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है 20 तारीख और 27 जून को जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा.
2: जी हाँ, शुक्रिया. तो 20 और 27 जून को दोपहर को 3 बजे किंग्सबरो में चैंडलर थिएटर जो है उसमें हम दो अलग अलग शोज़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं. पहला दिन जो शो होने वाला है उसमें रॉय कोसेना लिखित नाटक जिसका नाम है यू डिसाइड. बहुत ही अलग तरीके का इंटरैक्टिव नाटक है ये जो 22 बच्चे पेश करने वाले हैं.
1: वाह.
2: और इसमें इस निर्देशन में मेरा हाथ बटाया है मानसी शाह ने.
1: वाह.
2: और तो और उसके बाद सुप्रीत, प्रियंका, अमोल, विपिन जी आप खुद और प्रिया जी, प्रिया शुक्ला जो है, तो इन सब लोगों ने एकत्रित रूप से लिखा हुआ शादी सिलेबस नाम का एक स्लैपस्टिक कॉमेडी हम सादर करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं. वो लोगों को बहुत पसंद आएगा.
1: नाम भी इंटरेस्टिंग है.
2: तो मतलब वो कुछ सिखाएगा, कुछ सवाल आप एग्ज़ाम भी होगा उसमें और
0: अच्छा.
2: कुछ लोग उसमें पास होएंगे, कुछ लोगों को पता चलेगा अरे ये सवाल तो गूगली था, बिल्कुल ये तो सोचा ही नहीं था हमने. तो उसके लिए आप लोगों को देखने आना पड़ेगा. और फिर 27 तारीख को जो है ये हम श्री अनिल बर्वे लिखित और नम्रता शर्मा निर्देशित हमीदाबाई की कोठी, ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला नाटक जो संगीत और कोठा संस्कृति के बदलते दौर तथा उसके पतन को दर्शाता है वो हम पेश करने वाले हैं. तो राजश्री जी, आप जो पूछ रही थी कि पुराने और नए का एक बहुत ही अनोखा और सुंदर संगम दशकोत्सव में होने जा रहा है. और ये सारे जो नाटक है ये इसमें टोटल 56 लोग हैं कार्यरत है जो आर्टिस्ट है. तो मैं मजाक में उसको आज तक 56 बोलता हूँ. तो 56 टिकली कुछ भी कहिए, आप देखने को जरूर आइए. मैं सारे दर्शकों को
0: मैं तो कहूँगी आप 56 भोग प्रस्तुत करें.
1: बिल्कुल 56 भोग हैं, बड़े
2: सबने तो दिल को छू लिया मेरे.
0: अगर कोई व्यक्ति पहली बार आ रहा है नाट्य दर्पण का प्ले देखने तो उसे किस क्या मिलने वाला है, क्या महसूस होगा, आप बताएं उसके बारे में.
2: तो ये सारे शोज़ जो है इनमें मिलकर आपको एक बहुत ही अद्भुत ऐसा भावना और कॉमेडी और एक बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग सीखे हुए एक्टर्स, क्योंकि ये सारे एक्टर्स ने काफ़ी वर्कशॉप्स हमारे साथ किए हुए हैं, तो इसका एक संगम उनको देखने को मिलेगा. और हम ये प्रॉमिस करते हैं हमारे दर्शकों, आपके दर्शकों को, कि आप देखने को ज़रूर आए, क्योंकि हम आपको उन 3 घंटों में उस हॉल से बहुत दूर लेकर जाएंगे जहाँ पर आपकी जो दुविधाएं हैं वो भूल सकें और एक अनोखी हमारी दुनिया में जो भी कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह खो जाएंगे. और दूसरी बात ऐसी है ना कि 15 सेकेंड 30 सेकेंड की रील से आज कोई भी परे नहीं है, ना आप हैं ना हम हैं. तो उस एडिक्शन से हम आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे. और जीते जागते संवेदना प्रस्तुत करने वाले इन 56 कलाकारों को आप देख सकेंगे, ये एक अनोखी बात है. मतलब
1: वो कहते हैं ना कि हम सब आजकल ना अभिमन्यु हैं, जो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो आप एक प्रयास कर रहे हैं कि जो कि इस चक्रव्यूह से निकालने का लोगों को।
2: जी जी पक्का। और ऐसा भी एक इसमें से बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो जो एक कहावत ऐसी है कि आप अगर कोई दान दो तो एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, कभी दान का जिक्र नहीं करना चाहिए। मगर मेरा एक दोस्त मुझे परसों बोल रहा था कि अगर तुम बताओगे नहीं तो लोग भी इंस्पायर कैसे होंगे, लोगों को तुम्हारी जर्नी कैसे पता चलेगी। तो हम जो 100 लोग काम करते हैं एक साथ, सारे वॉलंटियर करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और आज की तारीख तक पिछले 9 सालों में हमने $25,000 इकट्ठा करके हमने अलग अलग चिल्ड्रंस चैरिटीज़, ज़्यादातर फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रंस को हमने डोनेट किए हैं, और ये साल हम सारा हमारा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो जो दर्शक देखने आएंगे उनको दे शुड ऑल्सो फील प्राउड दैट दे आर ऑल्सो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर आवर एबिलिटी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी।
1: बिल्कुल, उस जर्नी में वो जो दर्शक हैं वो भी उसके साथ ही हैं उस जर्नी के।
2: और अभी लगे हाथ में उन सारे लोगों को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमसे जुड़े हैं, खास तौर पर वो लोग जो स्टेज पर नहीं आते, जो हर क्योंकि हम हमेशा नाटक जब प्रस्तुत करते हैं तो जून जुलाई का समय होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पे, और उस ठंडी में वो नाटक के सेट्स पेंट करना उनके हाथ से कुड़ जाते हैं बेचारों के। तो वो सेट टीम है जो म्यूज़िक यू नो कंपोज करती है, जो डाउनलोड करती है, जो म्यूज़िक हमारे लिए खास कंपोज करके हमारे लिए बना के देते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो टेक्नीशियंस हैं, लाइट्स है, साउंड्स हैं, बैकस्टेज आर्टिस्ट है, और लगभग 20 से 25 वॉलंटियर हर शो में कार्यरत रहते हैं। मैं सबके नाम लेता रहूं तो आज की रात भी कम पड़ जाए यहाँ पर, मगर उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा आपने पिक किया, क्योंकि जो एक्टर जो स्टेज पर होते हैं उनको तो सभी लोग देख के तालियां बजा लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक से सब चीज़ों से उसका पता नहीं लग पाता कई बार लोगों को।
0: तो मैं अगला सवाल अगर पूछ सकूं, तो कहते हैं ना ए मूवी भी आपने देखी होगी, ABCD एनीबॉडी कैन डांस, तो वैसे एवरीवन कैन एक्ट, क्या मैं ये कह सकती हूँ?
2: जी जी
0: जी, क्या जी, आप एक्सप्लेन कीजिए इसको।
2: तो अभी एक्टिंग के दो मेन स्कूल्स है अगर आप सोचे तो, एक है अंदरूनी एक्टिंग और एक है एक्सटर्नल एक्टिंग। तो एक है जो एक्टिंग कैसे जीनी है, कैरेक्टर कैसा जीना है वो सिखाता है, जो आप मनन करके चिंतन करके आप सीख सकते हैं, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, उस कैरेक्टर में घुस सकते हैं आप। और जो दूसरा है वो हाउ टू है, मतलब उसे कैसे प्रस्तुत करना है। तो और तो हम उसे कैसे प्रस्तुत करना है उसको बहुत ही डिटेल्ड में वर्कशॉप्स के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं। और इसमें कोई भी एंट्री लेवल एंट्री पॉइंट नहीं है, एकदम मतलब नए से नए लोग जिन्होंने कभी नाटक में काम नहीं किया है, जिनको वॉइस प्रोजेक्शन क्या होती है ये भी पता नहीं होता है, उनको हम वॉइस प्रोजेक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, कंपोजिशंस, स्टेज मूवमेंट्स, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस, और उसके बाद इसकी सारी सारी चीज़ों की परिणति जो है वो मोनो एक्टिंग फेस्टिवल में होती है। तो हर साल एक मोनो एक्टिंग फेस्टिवल भी जनरली करते हैं। तो इनमें ये जो 12-15 लोग हैं वो अपनी कला, उनको खुद को उनका 3-5 मिनट का स्टेज मिल जाता है, वो खुद अपनी कहानी लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो सारे लोगों का नाट्य दर्पण में स्वागत है। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू एम्ब्रेस यू विद वार्म ओपन आर्म्स।
0: तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इनहिबिशन ही आपको लूज करना पड़ेगा।
2: जी
1: बिल्कुल, वो कहते हैं, मैंने तो कहीं पढ़ रहा था, एक्टर की प्लेज होती है कि मुझे कोई इनहिबिशन होना ही नहीं चाहिए, ये तो चाहिए इसमें करने का। पर वैसे आपने अभी जो बात बोली वॉइस मॉड्यूलेशन की या इस चीज़ों की बात हो रही थी, मुझे उससे ख्याल आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं एक्टिंग क्लास में आपके साथ, मैंने भी बिल्कुल शुरू से बचपन से, मतलब बचपन कहना चाहिए, एक्टिंग का तो बचपन ही था मेरे लिए।
0: आपके बचपन से कहिए।
1: बिल्कुल हाँ, एक्टिंग के बचपन की।
0: आपका अंदर का एक्टर यहीं पे, बिल्कुल इनके अंदर ही पैदा हुआ है। बिल्कुल
1: शत प्रतिशत सही कह रहे हैं। तो उसमें मैं जानना चाह रहा था कि बड़ा मज़ा आता है एक्टिंग के, जब हम वर्कशॉप करते हैं उसमें, वेन यू एक्ट थिंग्स एंड आउट, तो कुछ थोड़ा सा झलक मैं चाह रहा था, कुछ उसके कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन कहिए या कुछ भी हो,
0: कुछ
1: ऐसा कुछ भी,
0: कुछ मजेदार
1: कुछ ऐसा हो कि मुझे तो बड़ा मजा आता है कुछ भी देखने में, बच्चे भी मेरे को, मेरे बच्चे भी हंसते हैं इनको देख के जब करते हुए देखते हैं तो कुछ
2: अब,
1: भी।
2: अब वॉइस मॉड्यूलेशन में ऐसा है कि आवाज को तैयार करने के लिए हम ओम का इस्तेमाल करते हैं और हम तानपुरा लगाते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। आपकी आवाज आप खोजिए, आप उस आपकी आवाज को आप उसको फील करिए, उसको प्यार करिए पहले। तो जैसे आपको अगर बहुत खर्च में ओम लगाना है तो आप इतने खर्च में आप ओम लगा सकते हैं, और अगर आप बहुत हाई स्केल में अगर ओम लगाना है तो आप ओम ये स्केल में भी लगा सकते हैं। अब ये जो दो आवाज़ें आपको आपने खोज ली आपकी, और ये साउंड लेवल्स आपने आपकी खोज ली, तो इसको नाटक में कैसे इस्तेमाल करना है। कि जैसे अगर कुछ आपको शॉकिंग बताना है मुझे, तो अगर मैं आपको अगर बोलूं राजश्री जी मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और अगर ये कुछ सीरियस न्यूज़ नहीं है और मुझे अगर आपको बोलना है अरे राजेश्वरी जी आज तो आपकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से ली आपने ये साड़ी, तो ये आवाज़ में मॉड्यूलेशन देके आप भाव को बहुत आसान तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये रहा मॉड्यूल, और इसमें आप वॉइस को बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैं ये इस आवाज़ में भी पूरे नाटक भर अगर बात करूं तो ये अलग कैरेक्टर लग जाए, है ना।
0: बहुत ही बढ़िया।
1: एक थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि समय निकल रहा है तो एक क्विक फायर कर लें कुछ।
0: हाँ बिल्कुल, गो फॉर इट।
1: तो ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
2: वैसे दिमाग वो क्या होता है।
1: अच्छा वैसे क्विक फायर से पहले मुझे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके नाट्य दर्पण के साथ मेरा सौभाग्य रहा है कि इतने समय से जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो एक बात मैं और श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये अपने ग्रुप की तारीफ खुद से नहीं करेंगे, पर मैं जस्ट बताने को बताना चाहता हूँ कि इसमें ना सिर्फ इतने 100 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारी एथनिसिटी के लोग बहुत सारे हैं। ये भी बहुत ख़ास बात देखने वाली है कि हमारे साथ इसमें बड़ा जो कोहेसिवनेस, जो साथ साथ चलने की जो क्षमता है लोगों की, कि खासतौर से ऑस्ट्रेलियन तो होते ही हैं जो लोकल एथनिसिटी के हैं, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी भी होते ही हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, अफ़गानिस्तानी बैकग्राउंड के, बांग्लादेशी बैकग्राउंड के, अफ़गानिस्तानी मैंने बताया आपको शायद, तो इतनी सारी बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो इससे पता लगता है कि आर्ट जो है किस तरह से लोगों को आपस में जोड़ लेती है।
2: कितनी सुंदर बात आपने कही, और आपने याद दिला दी मुझे कि शायद मैं ये भूल गया था, क्योंकि इट हैज़ बिकम अ लाइफ एंड अ रियलिटी, स्वीट रियलिटी, दैट
1: वी रियलाइज करना ही बंद कर देते हैं,
2: वी हैव स्टॉप्ड रियलाइजिंग हाउ कोहेसिवली वी आर एग्जिस्टिंग।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि नेक्स्ट नेचर बन गया है,
2: नेचर बन गया अभी एक। और इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मेरा ऑब्जर्वेशन था बहुत पहले
1: जी,
2: कि हम सब ना एक नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि हम बटे हुए होते हैं, हम एक कंपाउंड अपने इर्द गिर्द बना ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत क्यों ना हो, और हम चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो भाषा का हो, और चाहे वो क्लास का हो, है ना। कि अच्छा आप लेक्सस में जा रहे हो, मसारेटी से नीचे तो मैं बैठता ही नहीं, भी हो सकता है, मतलब एक उदाहरण दिया मैंने इसका। तो इस सबसे आगे जाके सबको एकत्रित करके उस प्लेटफॉर्म में काम करना, ये मज़ा जो है ये बहुत ही अलग है, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव पीपल फ्रॉम ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया। We have got people from over, you know, Indian subcontinent, like Pakistan, Bangladesh, cool. as well. And they all contribute in so much varying, you know, varieties. And they bring so much different things to the table. And we all work very closely. And it is so supportive, such a warm environment.
1: It's that, so enriching.
2: Yeah, it is very enriching.
1: कि आर्ट किस तरह से जोड़ती है, और कितना आपको पता लगता है कि आपको सोचने का तरीका कितना खुलने लगता है, कि आप सोचते हैं कि इतना मैं छोटा कैसे सोच सकता हूँ या कुछ है या सोच सकती हूँ।
2: और वो मतलब इट इज़ नॉट एनीबडीज फॉल्ट, हम पले बड़े बड़े ऐसे हो जाते हैं कि शायद हम देखते ही नहीं हैं बाहर की दुनिया को, और हम शायद उतने ही लोगों को देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो पता चलता है अरे ये अलग ही है, और पहले हमने जो सोचा था शायद ऐसा नहीं है, शायद सारे लोग एक जैसे ही हैं, सिर्फ थोड़े अलग दिखते हैं, थोड़े अलग लहजे में बात करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत
0: सही बात है।
1: तो बैक टू रैपिड फायर, आई थिंक
2: हे भगवान,
0: गो फॉर इट। तो मैं शुरू करूं?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, आपके लिए रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। थिएटर या सिनेमा?
2: थिएटर।
1: डायरेक्टर का सबसे बड़ा हेडेक?
2: आधे लोगों ने वक्त पे मत ना आना, और आधे लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी जाना है ये बोलना।
0: तो लास्ट मिनट कैंसिलेशन या फिर डायलॉग भूलने वाला एक्टर?
2: लास्ट मिनट कैंसिलेशन।
1: कॉमेडी या ट्रेजेडी?
2: कॉमेडी।
0: एंड वन इंडियन प्लेराइट यू डीपली एडमायर?
2: तो बहुत कठिन सवाल है ये, आपने तो मेरे को
0: पास करना चाहेंगे?
2: हाँ, मैं पास करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हैं,
1: दो तीन नाम ले,
2: मगर चूंकि नाट्य दर्पण का दशकोत्सव है, तो मैं कहूंगा कि गिरीश कर्नाड।
0: वाह।
1: एक प्ले जिसे आप फिर से डायरेक्ट करना चाहेंगे?
2: नागमंडल। वापस मैं गिरीश कर्नाड जी का ही नाम लूंगा उसमें।
0: अवार्ड्स या ऑडियंस अप्लॉज?
2: ऑडियंस अप्लॉज।
1: एक एक्टर जिसे आप दिल से एडमायर करते हैं?
2: डॉक्टर श्रीराम लागू।
0: वाह। और एक शब्द में नाट्य दर्पण?
2: प्यार।
1: वाह। यदि आप एक्टर ना होते तो क्या होते?
2: मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और मैं हूँ भी। मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करता हूँ लोगों को दवाइयों पे, तो वैसे शायद बन गया हूँ।
1: आप तो वैसे ही वैद्य हैं।
2: और वैद्य ही हुई।
1: और रिहर्सल में लेट आने वालों के लिए क्या सजा?
2: नहीं देखिए, सज़ा तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पहले हमारी नौकरी, धंधा, घर बार, बच्चे, उनकी बीमारियाँ, लास्ट मिनट की चीज़ें, भाग दौड़, शॉपिंग, ये करके फिर नाटक में आते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, समझ करिए, तो वक्त पे आ जाइए।
0: और सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस कौन देता है, एक्टर्स या वॉलंटियर्स?
2: एक्टर्स।
1: वॉलंटियर्स तो ऑन देयर ओन ही आ रहे हैं, तो
2: देखिए सारे एक्टर्स भी तो वॉलंटियर्स ही हैं, तो वैसे तो कहा जाए तो सारे वॉलंटियर्स ही हैं। और ये सवाल शायद अब ऐसा पिक्चर टेंट कर रहा होगा कि सारे ऐसे होते हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, और मैं जानता हूँ कि उनकी भी परेशानियाँ बहुत जेन्युइन होती होंगी और होती हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। मगर चूंकि आपने सवाल पूछा तो मेरे को जवाब
0: देना पड़ा, इसलिए।
1: चलिए रैपिड फायर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि कोई स्टेज का कोई आपको कोई एम्बेरेसिंग मोमेंट याद है, कोई या इंटरेस्टिंग कुछ भी हो?
2: हाँ, मेरे बारे में ही ऐसा हुआ था कि एक नाटक था जिसको लिखा था श्री विजय महेश्वर ने, और निर्देशित किया था श्री विक्रम वाठवे हमारे गुरुजी ने। इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन चल रहा था कोपुड चौपाटी मुंबई में, और मैं उसमें लीड रोल कर रहा था कॉमन मैन का, और कॉमन मैन रिवोल्ट्स एंड बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ही टर्न्स इंडिया इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसा थीम था। तो मैं जब पुलिस के पास पहुंच जाता हूं कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस मुझे ज़ोर से तमाचा मारता है, और उन दिनों वो मुझे सच में तमाचा मारता था, पुलिस इंस्पेक्टर।
1: अच्छा।
2: तो जब उसने तमाचा मारा तो मेरी मूंछ निकल गई और वो आधी निकली सिर्फ, मगर उस आवेश में मैंने वो पूरी मूंछ निकाल दी, और आई कंटिन्यूड विद दैट नाटक। सो दैट वाज द मोस्ट एम्बेरेसिंग, मतलब जहाँ बोलते हैं ना कि शायद सीता माँ ने जैसे बोला होगा कि हे धरती माता मुझे अब निगल लो, तो वो एहसास मुझे हुआ। तो मगर उसी दिन मुझे बेस्ट एक्टर भी मिला उस रोल के लिए, क्योंकि जो शोले के अपने वो कौन है विलन, अमजद खान जी, अमजद खान साहब के जो भाई थे वो जज थे।
0: अच्छा।
2: तो उन्होंने फिर मैसेज भेजा हमारे डायरेक्टर को, विक्रम जी को, और विक्रम जी ने मुझे बताया सर ने कि पता है, उन्होंने कहा कि मैं दाद देता हूँ कि वो रुके नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया स्टेज के ऊपर, मगर फिर भी यू पुल्ड ऑन। तो वो एक याद है मुझे।
0: तो मेरे ख्याल से ये बात तो है स्टेज आर्टिस्ट की कि उन्हें ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। मूवीज में एंड थिएटर मतलब सिनेमाज में तो आप टेक्स रीटेक्स ले सकते हो, वो मौका आपको स्टेज के लिए पे नहीं मिलता। बिल्कुल।
1: वैसे मुझे अगले सवाल से पहले एक बात याद आ रही थी, एक पत्नी ना गोलगप्पे खा रही थी, तो 20-25 उसने गोलगप्पे खा लिए पत्नी ने, फिर उसने पति से पूछा कि मैं 10 और खा लूं क्या? तो पति बोला खा ले नागिन खा ले। तो पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति बोला अरे नहीं, मैंने कहा नागिन, खा ले जितने खाने हैं। तो इस बात से मुझे आया यार कि कॉमेडी में टाइमिंग है सीखी जाती है या नेचुरल होती है?
2: दोनों है, थोड़ा सा एक नेचुरल भी होता है कॉमेडी टाइमिंग, और वो सीखा भी जा सकता है। कॉमेडीज करना सबसे कठिन बात है, और मतलब दर्द भरा कोई अगर सीन पेश करना हो तो बहुत आसान है, थोड़ा म्यूजिक लगा दिया, सारंगी वारंगी लगा दी, एक अनोखा एक बहुत दुख भरा राग सुना, बिलास खानी तोड़ी लगा दिया, तो वो इमोशंस लाना। मगर कॉमेडी में देर इज़ नो हाइडिंग, देर इज़ नो ईजी वे आउट, उसमें कड़ी मेहनत और लगन ही चाहिए होती है।
1: बिल्कुल। बल्कि आज हमारे साथ ऋषि भी ज्वाइन करने वाले थे, ऋषि शाह, किसी इमरजेंसी की वजह से आ नहीं पाए। बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं और मैंने उनके साथ काफ़ी बार काम किया है कॉमेडी पर, तो आज मिस कर रहे हैं हम उनको। तो एक मुझे याद आया एक और कोट किसी ने भेजा है, दादी बोली आंगन में मोर पंख मिला है, दादा बोले जरूर मोर आया होगा, तो पोता वहाँ बैठा था छोटा सा 5 साल का, बोला हो सकता है कि कृष्ण जी आए होंगे। तो विश्वास को इतना ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भाग
2: जाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह। और एक छोटी सी अगर थोड़ा वक्त हो तो, आपने जो कहा कि जो सिखाने वाला होता है ना उससे भी ज्यादा सीखने वाला महत्वपूर्ण होता है, और विपिन जी का और हमारे नाट्य दर्पण से जुड़े हुए सारे लोगों का इंक्लूडिंग मी, हम सारे सीख ही रहे हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, तो सिखाने वाला तभी सिखा सकता है जब सीखने वाले की सीखने की मनीषा हो, और वो सिखाने वाले को भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो सिखाए और खुद भी उससे सीखे, जो अनोइंगली वो ये प्रोसेस It goes round and round in circles. You know, so you cannot put one on the pedestal. ऐसा।
1: बिल्कुल, सिखाने में भी इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है।
0: बहुत ज़्यादा सीखता है, बिल्कुल सही कहा विपिन।
1: तो अगर आपको मैं कहूँ कि राशि को प्रोग्राम में सिखाना है तो तैयार हो जाएं, आप कर लेंगे तैयार?
0: आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ?
2: आप तो मतलब हम सबको पीछे छोड़ जाएंगे, आपको बस आपका नाम दर्ज कराने की बस कमी है, बस और वो भी ऑनलाइन है आजकल फॉर्म, तो आप ऑनलाइन फॉर्म में सिर्फ सबमिट का बटन दबा दीजिए। रजिस्ट्रेशन
0: कर दिया है बिल्कुल, वॉइस मॉड्यूलेशन का जो आपने दिखाया किस तरीके से होता है, कि कैसे उसमें भी एक साइंस छुपा है, आई थिंक यू हैव गॉट मी ऑन द अदर साइड कि अच्छा ये डूएबल है।
2: चलिए चलिए, बहुत
1: पक्का। और समय समाप्त होने जा रहा है, तो आप दोबारा से बता सकते हैं कि अगर जो लोग आना चाहते हैं कि किस तरह से टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं?
2: हाँ, तो ट्राई बुकिंग इस वेबसाइट के ऊपर आप अगर दशकोत्सव ये अगर आप टाइप करेंगे
0: जी।
2: तो उसके तहत आपको दशकोत्सव के दोनों शोज का बुकिंग लिंक मिल जाएगा, और नाट्य दर्पण के फेसबुक पेज पे भी facebook.com/नाट्य दर्पण उसकी सारी जानकारी है। और दो शोज है, 20 तारीख को बच्चों का नाटक यू डिसाइड, और स्लैपस्टिक कॉमेडी नाटक शादी सिलेबस ये प्रस्तुत होने जा रहा है, और 27 तारीख को हमीदाबाई की कोठी, ये एकदम पावर हाउस

0: ऑफ इमोशंस एंड ड्रामा, ऐसा ये नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है। तो मैं सारे आपके श्रोताओं को एक वार्म वेलकम इनविटेशन देना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए और आप ना कि सिर्फ हमारे नाटक देखिए मगर हमारे ग्रुप का भी हिस्सा बन जाइए। हमें नए किरदारों की और नए दोस्तों की हमेशा हम राह देखते हैं।
1: बहुत अच्छा। और 20 तारीख के नाटक में मुझे भी देख पाएंगे आप शायद?
0: या 20 तारीख के नाटक में एक जो नाटक है वो लिखित और निर्देशित विपिन गेंधर जी, आपका शायद ये तीसरा चौथा नाटक है नाट्य दर्पण के लिए लिखित नाटक है ना?
1: चार पांच हैं। चलिए, वैसे तो बातचीत में इतना मजा आ रहा है कि लगता है कि चलते जाए। कहते हैं कि पेड़ ना अपनी छाया का हिसाब नहीं रखते, बस देते जाते हैं। और शायद कला से जुड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बनाते, वो यादें बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते छोड़ जाते हैं। मंदार जी, नाट्य दर्पण के 10 साल पूरे न होने पर आपके और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दोबारा से। हमें उम्मीद है कि ये जो 20 जून को और 27 जून को जो शो होने जा रहे हैं, मुझे पक्का पता है कि वो दोनों हाउसफुल जाएंगे शो। और कोई हमारे श्रोताओं के लिए और संदेश हो तो आप बोल सकते हैं?
0: नहीं, आई थिंक एक ही संदेश मैं बोल सकता हूँ कि नाटक देखने आई हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए और जिंदगी है, जो गाना आपने सुनाया था ना, जिंदगी है
2: बहने दो,
0: तो उस तरह से उसको रंगीन कर दीजिए और नाटक में हिस्सा लीजिए।
2: तो क्रिएटिव कन्वर्सेशंस का भी ना एक अपना ही एक अलग मैजिक होता है। जब बात दिल से निकले तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और वही आज हुआ है। तो और कुछ लोग, कुछ आवाज़ें, कुछ महफिलें ऐसी होती ही हैं जिनके साथ बस यही दिल करता है कि थोड़ी देर और बैठ जाए, थोड़ी देर और बातें करते हैं। तो बस ऐसा ही आज हमें फील हुआ। मंदार जी, थैंक यू सो मच आपके इस समय के लिए, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए एक एवरग्रीन क्लासिक फीचरिंग द मैजिकल वॉइस ऑफ आशा ताई, अभी ना जाओ छोड़कर।
1: चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार फिर से मिलते हैं।
0: मुझे गीतांजलि के इस कार्यक्रम में निमंत्रित करने के लिए विपिन जी, राजश्री जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया।
2: और आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए।
0: नमस्ते, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: अगले सप्ताह राकेश और पल्लवी के साथ सुनना मत भूलिएगा, अगले शनिवार को।
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: मेलबर्न ने खसरा वापस आ गया है और तेजी से फैल रहा है। यह इंतजार करने का समय नहीं है। अभी भाग लेने वाली स्थानीय फार्मेसियां 20 से 59 वर्ष के वयस्कों के लिए।

भी दूध पट्टा गुलाना रे गुलाबी गोरे रंग ले कराते आज सुनावे सौरी जाके दो दो पिटणे उंड कड्डणा बड़ा सिलाय तुरनावे सौरी जाके दो दो पिटणे उंड कड्डणा।